एक ओंकार सतनाम करता पुरख नृपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चेहन अरबरन जात

रेखपे को कहनो सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमतोज कही जय कोट इंद्र इंद्रान शाह शहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कैत तब सर्वनाम कथै कवन।

बेसुमार यथा अगणत अतुलै ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बोलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक सांझीवालता दे उपदेशक बाणी के बोहित धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालिओ सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा कीती है। जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठण दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है, आओ गुरु प्यार वालिओ जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो, ओह चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद।

0: से पार पुकारी प्रभु को सिमर है तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमर है से मुख सुहावे प्रभु को सिमर है तिन सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमर है तिन आत्म जीता प्रभु को सिमर है तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को

0: देखो जन्म मरंते डरे साधना की सरनी परे
1: जन को प्रव दरस प्यासा नानक ताके बल बल जासा
0: सकल पुरख

0: छपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान
0: अंदर अगल बार तन स्वागल पाथर कैसे तरह था
1: जाके अंतर बस

0: साधक शोभा प्रमय समानी
1: साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा पर फुले
0: साधक संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा
1: साधक

0: ने साध बढ़ाई नाना साध प्रभु बन आई
1: साध के संग न कबू दावे साध के संग सदा सुख पावे
0: सत्संग बसते गोचर लहे साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग बसे तानूचे साधु के संग मैल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल

0: दाद संतन भाई तिन पाया
1: प्रभाव
0: ने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोझी पर।

0: आदि कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी
1: कई कोट तीरथवासी कई कोट बन ब्रह्मे उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान दार है कई कोट कथकात विचार है
0: कई कोट नमत नाम ते आवे नानक करते कांत ना पावे
1: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिज्ञातम ने
1: को कई कोट पर दर्प कोई रह कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया श्रम माए कई कोट पर

0: ये सत्संग पारम तिन लागा रंग
1: जिनको आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
0: कई कोट खाणी रखन कई कोट आकाश ब्रह्मन
1: कई कोट होय अवतार कई जुगत की नो विस्तार
0: कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक

0: किछु नाही
1: हार बम्बु सुख होए तिसका नाम रखंट परोए
0: सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे
1: कोए मन में कण रंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
0: रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
1: नैनो पिक ठाकुर का रंग सा संग बिनसे सो संग
0: चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए अरविंद
1: कर हर कर्म श्रवणार कथार दुर्गे नानक उजल मथा।

0: मन चित आवे सो सन सुहेला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाया अपने कारज में आप समाया
1: सोत सोत सीजिया गुर प्रसाद सब बुझिया
0: भूता भी सब किस मूल ना

0: का नित्र का मंत्र न जाने हो।
1: आनंद रूप मंगल सज्जा के सर्व थोक सुनिए गर्ता के।
0: राज में राजोग में जोगी तम में तभी सर ग्रस्त में पोगी।
1: जय जय भक्त है सुपाया नानक किस पुर का किने अंत।

0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म मैं जन जन में पार ब्रह्म एके आप नहीं कुछ परम
0: सहस्यान प्लेयान जाये नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पर।

0: एक आस राखो मन माही सर्वरो नानक मिट जाहि
1: जिस धन को चार कुंड उड़दावे सो धन हर सेवा ते पावे
0: जिस को नत बांचे मी सो सुख साधु संग परीत
1: जिस सोबा को करे बलि करनी सा सोबा बज हर की सरनी
0: अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे अरे अब कद लाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान जपना नक दर गए परवान
0: मन प्रबोधो हर के नाई दैस तावत आ बैठा।

0: गुण गाए।
1: मनंतर विश्वास कर्मान्या करनहार नानक एक जानिया।
0: गहरे कहनाए जिसकी आस न मिलती जाए।
1: सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पर।

0: के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुनु है शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तस किए रहे सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे पार पियोई नानक दर्शन देख सा मोही
1: सत किया सब सत तिस प्रभ ते

राम नाम राम परमेश्वर का नाम है। जिहड़ा परमेश्वर का नाम है सार सार दे जिहड़े गुरबाणी दी समझ रखण वाले आ सार दे रारे नूं औंकड़ लगी है। इत्थे सार दा अर्थ है श्रेष्ठ उत्तम रस पीवे। उत्तम रस किहड़ा है? परमात्मा दा नाम अमृत रस। रस ते बड़े तरह दे ने, विकारां दे रस भी ने, नशियां दे रस भी ने, फल फरूट जिहड़े आ इन्हां दा रस भी है। रस कई तरह दे आ पर श्रेष्ठ रस है अमृत रस, जिहड़ा नाम विचों मिलना है, होर कितों नहीं मिलना। पंडित वह हुंदा है जिहड़ा नाम दे रस नूं पींदा है। उरे बाहरों नहीं पीता जाना, ये मन दे राही पीता जाना है, ये सुरत ने दे नाल पीता जाना है। ये अमृत रस है। जिहड़ा अमृत रस नूं पींदा है, राम दे नाम नूं अपने हिरदे विच विचारदा है, मन नूं अपने नूं सुचेत करदा है, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। जिहड़ा आप जुड़िया दूजियां नूं जोड़दा उहदा असर हुंदा है। मरे कहिंदे जिहड़ा आप नहीं जुड़िया वह दूजे नूं किद्दां जोड़ेगा। अवर उपदेशै आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिहड़ा इस अवस्था विच पंडित होएगा उदा उपदेश सुन के जगत दे जियां नूं जीउणा आ जाएगा, उन्हां नूं जिंदगी जीउण दा ढंग आ जाएगा। जिहड़ा जुड़िया होया पंडित होएगा, केवल दिखावे दा नहीं, पखंड नहीं, लोगां नूं वस करन वास्ते नहीं, भेख दिखाए जगत को लोगन को वस, कि लोकां नूं वस करन लई ओ पंडित ज्ञानी नहीं बनिया, वो अंदरों जुड़िया होया है। उदा उपदेश उदी मत उदी सिखिया ते फिर दुनिया दे लोक चलदे ने ते जिउंदे ने, उन्हां नूं जीवन जिउण दा ढंग तरीका आ जा

अंदर पंचम कड़ा प्रसाद जी देख सके हाजिर है। धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, समूह साध संगत विच वरताउण दी आ।

तू करता करना मैं नाहे जाहु कृणा हो बलिहार कुदरत बसया तेरे अंत ना जाई लख रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता कल कला प्रपूर रहया तू सच्चा साहिब सत सवाले हो जिन कीती सुपार पिया

हीरा कोई न जाने तेरा किताब केव चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पा।

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुर इतिहासिक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकागर करदे होए निमाणे जे होके समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां सतगुरु महाराज जी दे पावन चरणा च लग जाण। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता सरबंस दानी अमृत के दाते बादशाह दरवेश शाहे शहन शाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हो। आनंदपुर साहिब दी पावन धरती ते सतगुरु महाराज जी आईयां हुईयां सिख संगतां नूं निवाज रहे हन। रोजाना ही शस्त्र अभ्यास भी हो रहा है अमृतमयी बाणी का अभ्यास भी हो रहा है। नित दे नेम मुताबक सतगुरु महाराज जी मीरी और पीरी दे गुण बख्श रहे ने। पिछले दीवाना दे विच जो आप जी ने इतिहास सुनिया कि कुछ साधु उदासीन संपर्दा विचों जिन्नी कु बाणी उन्हां नूं कंठ है मन दे विच भावना बनी कि इस बाणी नूं लिखिया जाए और बा कमाल सुंदर लिखाई दे विच सुंदर अक्खरां दे विच बाणी नूं लिखिया उदी सुधाई करवाउण वास्ते और गुरु महाराज जी दी मोर लगवाउण वास्ते आनंदपुर साहिब चल के आउणा अगों दीवान नंद चंद दा मिल जाणा। जदों इह सुंदर लिखाई देखी उदी बनावट अत सुंदर देखी ते मन बेईमान हो गया भी ये जिहड़ा ग्रंथ ये मेरे कोल होना चाहिए। जदों मन बेईमान हो गया ते कई तरह दियां काढ़तां घड़ियां बहाने बनाए। लगभग एक साल का समा इसे तरह बतीत होया। पहला 6 महीने लंघ गए फिर उन्होंने आके बेनती कीती इसे तरह गुरु साहब महाराज जी नूं भी बेनती कीती ये मन फिर भी नहीं सुधरिया और मन दे विच ये खोट उसे तरह बनी रही। अखीर फिर अंदर दी जड़ी जहर सी वो मुख तो निकली।

आनंद सुनो मिट पार दियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन जिउण दी समर्था बख्शो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। दोहरा गया भई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है।

0: गुर अंगद कियो निदान, अकथ कथा ज्ञान, पंच भूत बस कीने जमत ना तरास। गुरु अमर श्री गुरु राज जोग तखत दियन गुर रामदास। प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारन मनुखै जन कियो परगास। गुर अंगद दियो निदान, अकथ कथा ज्ञान, पंच भूत बस कीने जमत ना तरास। गुरु अमर श्री गुरु सत कलयुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कवल जास। सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुर रामदास। रड जिसे तारियो तरत अर व्यूम अर पवन ते नीर सार, अवर अनल अनाद कियो। सस रिख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो। सुर नर सपत समुंदर कै तारियो त्रिभवन जास। सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास।
1: कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवने सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सत गुरमुख भण्यो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धार, पाहन मान करे ज्ञान।

दास पाट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मह तर सो जन्म मरण दोहु थे रह गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन

सुनत समाध शब्द जिस केरे फुन दुख नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तहनेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे जो हर बुद्ध रिद सिद।

संत गुर सिख धरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रमत

सूरा आत्म जिने सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की